तेरे कोई हमारा नहीं है। समंदर का साहिल पहाड़ों का दामन, समंदर का साहिल पहाड़ों का दामन, बजुज आह के कुछ हमारा नहीं है।

जिसने चके हैं दोस्तों, फानी बूतों के नम कियात। ऐ मेरे खालिक़े हयात, तेरी खुशी है सद हयात।

यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फ़कत तुझसे हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं। हर दम ज़िक्रो फ़िक्र में तेरे मस्त रहूं सरशार रहूं। होश रहे ना मुझको किसी का, तेरा मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बस तादा में आखिर विरदे।

याद में तेरी सबको बोला दूं, कोई न मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लौटा दूं, खाने दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस तादा में आखिर।

नजर देखो जिधर तू ही तू आए नजर देखो जिधर। दर्द दिल मीन्स मोहब्बत ऑफ अल्लाह।

कभी दिल से शुक्र करना। मेक शुक्र, इंक्रीज शुक्र दिन अल्लाह तबारक व तआला इंक्रीज द नेमत्स। मेरी जिंदगी का हासिल।

लाख आए मुसीबत तो परवाह नहीं, लाख टूटे सितम उसका शिकवा नहीं, चाहे बदले जमाना नहीं उसका गम, चाहे

ओ अल्लाह लाख आए मुसीबत तो परवाह नहीं, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ टेस्ट कैन कम अपॉन मी आई डोंट केयर. ऑफ कोर्स वी आर एक्सट्रीमली वीक, वी मस्ट नॉट आस्क अल्लाह तबारक व तआला फॉर टेस्ट एंड ट्रायल्स, वी मस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड हिज मर्सी. बट ही वॉज कमिंग थ्रू दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टीज बिकॉज वी गॉट इस्लाम ईजली, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम अवर पेरेंट्स एंड वाइफ्स एंड चिल्ड्रन एंड फैमिलीज. नोबडी रिजेक्टेड अस बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, वी आर बोर्न इन मुस्लिम होम्स, सो वी डोंट अप्रिशिएट दिस इस्लाम एंड ईमान. Now this person coming from Hinduism into Islam and the whole community turning against him. So he only knows what he was going through. Now to remain steadfast in such conditions is not an easy thing. So he says, Laak aaye musibat to parwa nahi, laak toote sitam uska shikwa nahi. Oh Allah, I'm not complaining to you about all these people having turned against me. I'm not complaining to you that they are ill-treating me, they are abusing me, they are swearing and cursing and criticizing and ridiculing and mocking and teasing. I'm not complaining about that. Laak aaye musibat to parwa nahi, laak toote sitam.

जुकुजीरे का सहारा चाहिए, गम तुम्हारा दिल हमारा चाहिए। बहरे उल्फत का